0: संगीती झेमर सर संगीती सदनी बक्ष
1: श्री शादी कोर
0: ज्यादा का नाम सिंधी का था श्री शादी कोर ये जो दमिला वाला